इतनी सेवा प्रवान कर लो धन का दे जो भी आप साहेब गुरु ग्रंथ साहब जी की जूरी हजर विच बैठ के हरी जस हरी कीर्तन बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल सेवन करो सुदास भी अपने उच्चे भाग संबंध है आप वर्गी साध संगत के दर्शन करने का सुभाग प्राप्त होया है जेडे कि गुरु ग्रंथ साहब के कागज शौके है नहीं तो ज्यादातर गुरुद्वारा फिल्मी कीर्तन चलता है जिन्हों कहते वे वे रागी हैं संत बनते हैं सब फिल्मी टूना गा रहे हैं महाराज बख्शत करन सारे सार गुरु के बख्श बराबर रखन ते कीर्तन सुनन दी सरदा बख्शन आओ अंत दे विच सरबत मारी भाई जितने गुरु चरणां विच बैठे हो छोलियां अड़के यही अरदास बेनती जो दिल करनी है अकाल पुरख अगे हे सर्व शक्तिमान परम पिता परमेश्वर जी आप दी कृपा करो सारी छोलियां विच अपने पवित्र नाम दी खैर पाओ जपो सारे कोई इस नाकाल

0: तेरे खंड सत्य ब्रह्मन सत्य तेरे नो सत्य आकार सत्य तेरे करण सब विचार सत्य तेरे अमर सत्य दीवान सत्य तेरे हुक्म सच्चा फरमान सत्य तेरे कर्म सच्चा निशान सत्य तो दाखिला करो सच्चे सब तान सच्चे सब दू
1: सच्ची तेरी सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुछ सच्चे बाजा नानक सत्य सच्ची जो मर जमे सो कच कच महला पहला
2: वड्डी उड़े जा वड्डा ना वड्डी उड़े सत्या वड्डी उड़े निश्चल था वड्डी उड़े जाने ला वड्डी उड़े बिरस पाओ वड्डी उड़े पुछंदा वड्डी उड़े जा पिया नानक और नक थिन जे की तक ना सरु जा
0: महला दूजा ए जग सच्ची की कोठरी सच्ची कब जबा एक नाम कमाल एक नाम कुमे करबनास एक नाम पाणे कड ले एक नाम आया बचनवास ए पी आखन जापे किसने रा नानक गुण गुण जाने जाको आप

गज के बोलना सतनाम श्री राज पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना आवे धर्म बहा लिया उथे सचो ही सच निबड़े तुन वक्त दे जमा लिया थाओ ना पाए कूड़ियार मुह काले दोष चालिया तेरे नाए रते सेजन गए हार गए सुठगण वालिया लिखना आवे धर्म बहा लिया हम मूर्ख मुग्ध।

0: सतकर्ता श्लोक मला पहला विस्मादनाथ विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पे विस्माद रूप विस्मारंग विस्माद नागे फिरे जन विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खीरे बनानी विस्माद तरती विस्माद खानी विस्माद साध के प्राण
1: विस्माद स्नोक विस्माद बेजोग विस्माद पुख विस्माद पोह विस्माद शिफ्ट विस्माद सला विस्माद औजल विस्माद रा विस्माद नेने विस्माद विस्माद देख के हाथ ना दू देख बड़ान रिया विस्माद नानक बुद्धन पूरे
0: महला पहला कुदर से कुदर सुनिए कुदर बात

हर प्रेम रस विषम होय सहज समाए है। प्रेम रस विषम होय सहज समाए छात्र के शब्द सुन अखियां कर गई छात्र के शब्द सुन।

पहला नियम है गुरसिख दा के गुरु की संगत करनी। सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके, ते जेड़ा सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आउन वाला गुरसिख नहीं, जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करदा, प्रात काल सत संग तो बगैर व्यर्थ कर दिंदा, गरीब नवाज कहंदे हन ओ गुरसिख तनखाइया है, ओ गुरसिख गुरसिख नहीं। गरीब नवाज साहब फरमान।

गुरु का दिता होया निशान केसा दे अंदर कंघा रखना ते दोनों वक्त केसा दी सफाई करनी कंघा फेरना दस्तारा जड़ा है इसनू उतार के बड़े आदर सत्कार दे नाल दस्तार नू फिर सजाउना टोपी जी सिर दे उपर धर लैनी ए गुरसिख दा कर्म नहीं कंघा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बंद आई दातन नीत करे ते मुख दी सफाई करे क्योंकि जिस मुख विचों जिस रसना नाल परमात्मा दा नाम जपना ओ रसना पवित्र होनी चाहिदी ओ मुख पवित्र होना चाहिदा भाई नंद लाल जी गुरसिख दोनों वक्त कंघा करे गुरसिख दस्तारा सजावे झाड़ के छंड के दस्तारा सजावे अते मुख नूं पवित्र रखे।

अगला कर्म है भी दसवंध, जड़ी किरत कमाई करनी उस विचों दसवां हिस्सा गुरु के अर्पित करना ते गरीबां गुरबियां दी सेवा करनी। दसवंध गुरु

चोरी ठगी यारी दा पैसा कतर कर देन। साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना, क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा धन इकट्ठा करदा ते जेड़ा गुरु नूं दसवंध नहीं देंदा, किरत दस ना होंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सची दरगाह।

गुरु की संगत विच आउन वाली मां भैन उसनू मां भैन दा रूप जाने, धी नू धी दा रूप जाने। बुरी निगाह नाल ना वेखे साहब गरीब नू आज सचे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैन जो आवे संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करे क्रोध, कन्या मूल ना देवे सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैन नू मां भैन ना जाने, धी नू धी दा रूप ना जाने, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे हन ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जेड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बच्ची दा गला घुट देना, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बच्ची ने घर अंदर जन्म लिया, उस नू बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जेड़ा है वह सपुत्र है, बच्ची जेड़ी कौर है ते छोटा सपुत्र है राजे दा बादशाह दा, इस करके बच्ची ते बच्चे नू इको जिहा प्यार देवे।

सात जन्म कुश्ती होए मरे सिख होके सिर ते टोपी धर लैनी टोप लै लेना भाव के पग बन के रख देनी माया वाली पग ला बन के रख देनी काफी दिनों तक बनी रहनी रोजाना उसनु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु आज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकते। जे अपना दस्तारा अपने हथी रोजाना सजाओ खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु आज कहंदे ओ मेरा सिख ने जेड़ा टोपी सिर ते रखदा है ओ सत जन्म कोड़ियां दे जन्म दे विच बतीत करदा है। गरीब नु आज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते कोड़ा हो जांदा होए सिख सिर टोपी तरै सात जन्म कुश्ती।

एक वाहेगुरु अकाल पुरख महाराज दे दिते हुए मंत्र तो बगैर दूजा मंत्र जपन वाला गरीब नवाज कहंदे मेरा सिख नहीं। आई नंद लाल ए मर्यादा लिखी जाओ नाल नाल जिहड़े मैं वचन कह रहा ते इन्हां दे अंदर कोई तब्दीली ना आवे। जो मेरे मुंह चो निकल रहे ने हूबहू उसे तरह लिखे जान बल्कि प्रोड़ता करके लिखे जान ते वाधू चंगी गल है। क्योंकि सिख ए ना कहे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निकले हुए मुंह चो वाग शायद समय दे गुरसिखा ने फर्क पा दे।

रोजाना दा उचारण वाहिगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहिगुरु वाहिगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहिगुरु करे, घर विच बैठा वाहिगुरु करे, रसना दे उपर वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु दा टिका होवे, ते वाहिगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे, ऐसा वाहिगुरु हिरदे च वसे भई वाहिगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछे। ए ना होवे भई गुरसिख नू वेख के राह ही छड जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है, गरीब नू सचे पातशाह ने आउन वाले समय नू वेख्या, इस करके ए पूर ने पा दिते गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा बल्कि

विस्तार केवन के नहीं निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा कि नहीं ग्रह तजवन खंड पाया कि नहीं मोन अधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती कि नहीं कया मैं कुले वडाई कि नहीं कया बां बो भाई कोई कहे मैं धने पसारा मोहे दीन हर हर आधारा किन्हीं भवन सब

भाई जोगा सिंह वेख रहा है किनू वेख रहा है फरीद जी ने लिखिया है फरीदा ए विस गंदला तरिया खंड लिवाड़ व्यो दिया गंदला गंदलों के उत्ते भाई व्यो लपेटी हुई व्यो दिया गंदलों उत्ते खंड लपेटी हुई पर विच जहर भाई जोगा सिंह ने सोचिया पौड़ियां थानी चढ़ जावा उपर नाल ही छाओ मना आनंदपुर साहब इथों नेड़े है कोई वेख ना लवे अजे नहीं जाना थोड़ा समा ठहर जाते हां जिस वेले दुनिया अपने अपने घर सौ जाएगी फिर जाओ थोड़ी देर बाद भाई जोगा सिंह सोचिया भी हुण लोकी

गुरु बाबे मिलते सेवते गुरु अंगद की ते कुआरे गुर की जी पीढ़ी विचारिया क्या हठ के ना विचारे गुर चौथी पीढ़ी चिकिया गुर चौथी पीढ़ी चिकिया जन निंदक दुष्ट सब तारिया जहां निंदक दुष्ट सर तारे तारे आ जहान लहया अहमा।

हमारी जेवा एक ब्रह्म हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जपे आ हर तुम बड अगम अथाह।

हमारी जेबा एक प्रभ जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कमन गुण कही है तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कमन गुण कही है जेबा एक तू समर्थ बड़ा मेरी मत थोड़ी मेरी मत थोड़ी हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी मत थोड़ी तू समर्थ बड़ा बड़ी हो बड़ा।

बड़ी हूँ बता अबार तेरा मर्तबा, बड़ी हूँ बता अबार तेरा मर्तबा। निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ ते उठान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ ते उठान, तेरो थान तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भक्त सोहे दरबारे, तेरा थान सुहावा तेरा थान सुहावा, अर्थ सुहावे ताल सुहावा विच अमृत जल छाया, तेरा थान सुहावा हर जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम, हर मंदिर साजिया निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना कोई, जिस पापी को मिले ना कोई शरण आवे।

जन नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श रहे हो। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जबे आनिया हर तुम मत अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पहा, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संग तरा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला हर कृपा।

अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूर नहीं पायो, किन किन सब हो कर जाना, एक रूप किन हो पहचाना, जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, तिन समझे सिद्ध हाथ ना नानक अंगद को बप धरा, धर्म प्रचुर इह जग मूं करा, अमरदास पुन नाम कहायो, जन दीप ते दीप जगायो, जग वरदान सवा आवा, रामदास तब गुरु दिजे पूर्व देवड़ा, इसदी वस्त किसे घर आवे, बैठा सोधी पातशाह, रामदास सतगुरु जग तो मन ध्यान धरे, फिरत सकल जग कबहू को पावे, आत्म प्रकाश को वेद बाणी सहत ब्रंच जस गावे, जग को शिव मन कहना तजात कबिलाश को, जाको जोगी जनी सिद्ध साधक अनेक तब, जटाजूट पेख किए फिर उदास को, सो तिन सतगुर सुख भाए।

गुरु साजी निवाजी सास जीओ राग श्री राग तुहाडी सेवा विच पढ़न की सेवा कर रहे हैं। श्री राग का जो चलन है वह दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों असीं ऋषभ कहने सा तो बाद दूसरा स्वर रे है उसको ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान सुर है। और पंचम जिसनों पा कहने सारे गामा पा पंचवा सुर जो है वह इसका वजीर सुर है। इन्हों दोनों सुरां के सुमेल के नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम होता है, जिस तरह

जो पड़ताल है जिसन पड़ताल गुरुमातंत्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नू बदल के गायन करना। जिवें हुण पहला जो रहाओ है वह ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इस नू असीं दीप चंदी कहने हां, 1400 मात्र का ताल है, ताल बदल गया है, इस नू पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लाओ।

गुर जिन सतगुर पुरख ना पेटियो ते भागहीन वसका, जिन सतगुर पुरख ना पेटियो ते भागहीन वसका, ओए फिर जो उनको आई है विच विष्टा कर विकरा, उन्ना पास दुआस ना पीती है जिन अंतर क्रोध चंगा। अंतला पद

श्रद्धा गिरती धर्म दृष्टांता गिरती देम दिरना धागिरती धर्म दृष्टांता गिरती देम दिरना भागिरती प्रिक्ते बन

brega, perna, caga de tom, bom vinho, vai dar viver, caga de tom, bom vinho, dima, नक्षत्र वीणा का यह स्वर है दीन, तिरना जो है यह सितार का स्वर है, तिरना तिरना सितारे च वजदा और दीन जड़ा है नक्षत्र वीणा में वजदा, यह साजा के दर्शन कराए ने।

स्वरूप पवन गुरु पाणी पिता माता धर्म महत दिवस रात को दाई दया खेले करनी आपो अपनी सारे जपो जिन्नी नाम मशक्कत नानक।

हमारी जेहबा एक ग्राम हर के गुण अगम अथा हम क्यों कर जपे आणिया हर तुम बड अगम अथा।

हमारी जेबा एक प्रभ जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कमन गुण कही है तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कमन गुण कही है जेबा एक तू समरथ बजा मेरी मत थोरी मेरी मत थोरी हम अज्ञान अल्प मत थोरी मत थोरी तू समरथ बड़ा वड्डी हो बड़ा।

केनिर्जुन रूप हो केनिर्जुन पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमालय जावे गोर घर देख कुन गावे तेरा नाम है पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमालय जावे गोर घर देख कुन गावे तेरा नाम है दुख दुख सद पौन सद लगते।

0: उड़े उड़िया वे सह को सत पाछे बचरे छरिया तिन कवन खिलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निधान दस अस्थान ठाकुर कर दल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरे अंत न पारा वरिया
1: समाला चौथा सो पुरखी को ओंकार साहब गुरु प्रसाद सो पुरख नरिन जी हर पुरख नरिन हर गम गुरु पारा
2: जावे सत्ता रे तुझे हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जी आका दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हरा पेटा कर हरा पे सब जी क्या नानक जंतु विचारा तू काट काट अंतर सब अंतर जी हर एको पुरुष माणा एक दाते एक पैखारी जी सब तेरे चोट बनाना तू आपे दाता आपे मुक्ता जी तुझ में नवर ना जाना तू पार ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म जी तेरे क्या गुणा खाना जो सेवे तू जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे तू जी से जन जुग में सुखवासी से मुख से जिन हर त्या जी तू टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्या जी तिनका पो सगवासी जिन से मेरा हर जी त्या हर विश्वासी तेरे अनेक तेरे अनेक पड़े बो सिमर शास्त्र जी कर क्रिया खटकन ग्रंथा
0: से भगत से पले जनान जी
2: जो पाल मेरे हर भगवंता तू आप प्रखा परम प्रकर्ता जी तुझे वड़ावर ना कोई तू जुग जुग एको सासा तू एको जी तू नेक चल करता सोई तू दया पे पावे सोई।

0: आशा मरना चौथा तू करता श्या मुंडा साईं जो तू पाए सोई थीसी जो तू दे सोई हम भाई कराओ सतगुरु तू सुनि जाय सुन कृपा करे ते नाम रतन पाया गुरु मन को आया तुझा छोड़ा मनाया तुंदर उस तुझी माय तुझी का बिठा कभी ना जी जन सब तेरा खेल वजोग मिल विछड़ा संजोगी में जिसनु तू जनाए सोई जन जाने अर्गुण सदी आप खाने जिन्हार सेवा तू पाया सहजे अरना समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए द्विंदु जावर न कोय तू कर कर वेखे जाने सोई जन नान गुरु प्रगट होया समाला पहला
1: तिसरवड़े पहले निवासा पानी पावक तिने किया पंकज मोह पगने चाले हम देखा तै डूबले

0: हमरी करो हाथ देर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मरे हमारा अपना जान करो पित पर हमरे दुस्सवे तुम काबो आप हाथ दे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे कर तारा मोर इच्छा निज कर दे करिए सा पैरन को वास संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रे प्यासा तुम्हें छाड़ को वरना त्याऊ जो बरचाऊ सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निभरिए बुझो सदा हमारे पच्छा श्री स्तुजियो करियो रक्षा राख लियो मखन हारे सैब संसार प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चितर दिस्कंता काल पाए ब्रह्मा भवतरा काल पाए शिव जी अवतरा
1: काल पाए कर्मशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जो सुखियो वेदराज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताय हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैन दक्षिण उपजायो आदंते के उतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार ते सिखो मारी सकल प्रजा दिना सवारी सिमरन को सिमरन सुख दियो सतरन को पल मोहबत कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछाणत चीटी ते कुंचर स्थूला
0: सब पर कृपा

दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जान जब युद्ध कर करा करतारा प्रजा तरत तब दे अवारा जब या कर कर हो कबू तुम्हें मिलत दे तरसम जेते बदन से साधारे आप अपनी बुद्ध उचारे तुम सब ही तेरे

को कै सदा शिव निरंकार का चिंत नहीं भयो। आप अपनी बुद्ध जयते वर्ण पिन पिन जयते तुम्हारा लखाना जाय पसारा कै भी सदा प्रथम संसारा एक रूप रूप स्वरूप रंग प्यो राव कई गोपा अंड जे रसे तिस्किनी कुछ खान बो राय दिनी कौ राजा हो बैठा कौ सिमट प्यो शंकर खेटा सगली शिष्ट काय चंबो आजुगा सरु संयम और अच्छा मेरी तुम करो सिख बार असिख संगरो दुश्चिंत उठो थुटवाता सकल बलेश करो नन खाता जे अस्तुता सरणी परे तिनके दुष्ट दुख है मरे पुरख जम पग परे त्यारे तिनके

0: शैया पाए गए जब ते तुम्हारे तब ते गुमाम तेरे नियाने राम रीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न मान्यो
1: सिमरो शास्त्र वे सब गौ भेद के आम एक न जान्यो कृपा तुम्हारी कर मैं न क्यों सब तो बखान्यो सगल

सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ते पाया, सहज छेती मन वजिया वधाइया। राग तन परिवार परियां शब्द गावने आईया, शब्दों तो गाओ वरी केरा मंजनी वसाया, कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मना मेरिया तू सदा रो, हर नाल हर ना रो, तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारना। सबना गला समरा स्वामी सो क्यों मना विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रो नाले, साचे साहबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ जिस तेरे सो पाए, सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसाए, नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहब क्या नहीं कर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मना वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान किया गुरु बिटो जिस वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो सब त्रोपे यारो, साचा नाम मेरा आधारो वाजे, पंच तित कर सवागे, कर सवागे शब्द वाजे, कला चित करतारिया, पाइन दो तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, तुरकरम पाया।

0: बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहल तुरे।
1: थाल विच त्रिवस्तु पयो सासन तो विचारो अमृत नाम ठाकर का पाए जिसका सब सरदार हो जेको खावे जेको पूछे इसका होए कदार हो ये बस तजी ना जाए नित्र खोरदार हो।

फिर पटकेरे ने तेनो दुख ने भुख तिनर निधन नू कही। उस इंसान नू उस नर नू कोई दुख ते भुख वापर नहीं सकदी, ओ निर्धन नहीं रह सकदा, ओ निर्धन नहीं रह सकदा। तिनर शोक न हुए तिनर से अंत न लईए, उथे शोक नहीं हो सकदा उसने। तिनर से अंत न लईए तिनर सेव न करे, वो किसी का गुलाम भी नहीं होगा। तिनर सह सहज समपे, वो गुलाम भी किसी का नहीं होगा, ते हर एक विच ओनू वेखूगा। सहज समपे तिनर दुलीचे बह है, दुलीचे का अर्थ है दुलीचे का गलीचे, उदा स्टैंडर्ड एडा उच्चा हो जूगा, गलीचे विषय होंगे। तिनर दुलीचे बह है तिनर उथप विथप है, ओदे विच एनी शक्ति आ जूगी, वो राज खो भी सकूगा तो राज दे भी सकूगा, उखड़िया होया नू वसा भी सकूगा। तिनर दुलीचे बह है तिनर उथप विथप है, सुख लह है तिनर संसार में, इस संसार विच ए सारे सुख ओनू मिलन। अप है पट रिप मद ते सक्यथ तिनर जालप पाने, किनू ए सुख मिलनगे किनू ए वड्याईया मिलनगियां। गुरु अमरदास सो प्रसन्न गे जिदे ते तीजा गुरु नानक गुरु अमरदास महाराज जी ते प्रसन्न हो जाणगे, ये सारे सुख

सतगुरु गुरु रामदास आमता पुरवरा गुरु रामदास आमता पुरवरा जहां मान अपनी सिद्ध को सभा जहां

अनक जन्म बीती अन परमाई, अनक जन्म बीती अन परमाई, कर वासना देवे दुत्तर माई, दिन रैन अपना किया पाई, दिन रैन

पन्ना भरवान लख प्रतीता सहयोग विवान लख सुरत संग्राम राम छुटे प्राण लख सुन पढ़िए पाठ प्राण करना किया।

चारो राम को पोपड़ चारो राम को मेरा कांडा ला त्या जाए हम बन चारो राम को।

परवार पार के दानिया, परवार पार के दानिया लिख ले आल पता मुझे जम डंड।

राग भीम पलासी, दो राग ये आपस विच बहुत मिलते ने, धनासरी ते भीम पलासी इको ही सुरा ने इन्हां दियां। सिर्फ केड़ी सुरते ठहरना है भीम पलासी विच ते धनासरी विच, केड़ी सुरते इदा ठहराव है, ठहराव करके ही इस दे राग दा रूप बदल जांदा है। भीम पलासी विच मध्यम ते ज्यादा ठहरना पैंदा है ते धनासरी विच पंचम ते, ते शब्द भी धनासरी राग दा है। जी की एक ही पैमानी अवर जतन कर रहे बो तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी। तीन ताल विच इसकी बंदस है, अति सुंदर बहुत। सो आप जी श्रवण करो।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, मैं बंदा बेखरीद सच्चा है वो मेरा, जो पिंड सब तिसका सब कुछ है तेरा, माने ने माने तू तने तेरा परवासा, बिन साचे अंते को है तो जानू काचा।

तो तुम पे लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता,

तेरा खेल अखाड़ा जियो। तुर बिंदु जा और न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। क्या कहिए किस आस सुनाइए, जो कहना तो प्रभु जी पास। सब किता तेरा वरते, सदा सदा तेरी आस। जी दे वड्याई ता तेरी वड्याई।

जन को तब अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी सा मसलत परवान चरण शरण हम अनाथ ना थकन अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आला दे इस दिन आम की पत परमेश्वर गत नारायण तन पाल गुण साखी।

हल्त पल्त प्रभ आप सवारे कार्य होए तले पूरे हर नाम जपत सुख सहजे हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होत साधु तुरे आवण जान रहे थित पाई जल मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दा गुरु गुर सच्चा सिद्ध नहार गुर तुठे सब कुछ पाया जन नानक सब बनिहार हर गुण गाओ साफ सफाई हर गुण गाओ साफ सफाई मन तिंदे।

सब कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उना दे तन मन अर्पण करी जिना ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उना ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे व्यापारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा वाहिगुरु तों।

ऐसे महापुरखां दे सिर्फ दर्शन ही कीतियां ओ पाप मुक जांदे हन, खत्म हो जांदे नी।

मनुख भगती करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है, महापुरुषां दे चरणा दी पूजा कर, उन्हां दे चरणा ते सियाणपां छड के जदों अपना सिर रखेगा। बस बाबा जी कहंदे ने जवां दी मार तो तैनू छड़ा लैणगे। कबीर जी ने भी आख्या